0: நேர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ். பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापे

0: மோடி தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ள 69% இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் திரு விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டு வந்த 23
1: ஐபிஎஸ் அதிகாரி பால. இயம் ஆகாஷவாணி சம்பிரதி வார்த்தாக ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சக புனித திரிபாட்டி. अथ वार्ताः. केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्. सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति. जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति. गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति. गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति. राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी. परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए. और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती. श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्तिशृङ्खलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्. प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारताष्ट्रेलियादेशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धञ्च हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्. सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः. भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्. श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्. तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्. केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति. गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय

0: स्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
1: ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 7 மணி.

0: தொடர்வது ஆஜ் சவேரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात AIR FM गोल्ड पर एक नई सुबह में कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। गुड मॉर्निंग तन्वी।
1: गुड मॉर्निंग सरफिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस सरफिरोजी हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज Savere, and we are going to give you some latest information in the national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this particular day, that is 27th of May 2026. And today is Wednesday, so just want to wish you a very happy Wednesday. This is the middle of the week and I hope you all feel energetic.
0: बिल्कुल तन्वी, आपने बात की कि national international खबरों से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, तो सबसे पहले देश की हलचल ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The Supreme Court will today pronounce its judgment on the batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI, Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year, following extensive hearings. The petitions challenge the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under the Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and also the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories.
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं।

0: The Ministry of Railways has approved the launch of the country's first hydrogen-powered 10-coach DEMU train. The move marks a significant step towards promoting green and sustainable transportation in the railway sector. The train will run at the maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat using hydrogen fuel cells to generate power. The train will have a total power capacity of 1200 kilowatts. It will use distributed power rolling stock technology, which means the power system will be spread across the train coaches instead of being placed in just one locomotive.
1: मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। विभाग ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में भी और उमस भरा मौसम रहेगा। इस बीच राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में कल अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
2: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: NASA has released details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to the moon as part of the US plans to build a lunar base. Amazon founder Jeff Bezos's space company Blue Origin is one of the several companies picked to build the machines. The US wants to land Americans back on the moon before President Donald Trump leaves office in 2028. But NASA is competing with China to return humans to the lunar surface, meaning the space agency is under pressure to appear to be winning the new space race. China is forging ahead with its own plans to land humans on the moon by 2030.
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को तुरंत अपना लंबित ई चालान भरना होगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ठग संदिग्ध भुगतान लिंक वाले फर्जी ई चालान नोटिस भेज रहे हैं। ऐसे अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से उपयोगकर्ताओं के मोबाइल पर एपीके फाइल स्वतः डाउनलोड हो सकती है, जिससे व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा खतरे में पड़ सकता है। जांच इकाई ने लोगों को एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल या किसी भी अज्ञात स्रोत से साझा की गई एपीके फाइलों को इंस्टॉल ना करने की सलाह दी है।
0: And let's move on towards sports. Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs set by Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans were all out for 162 with three balls to spare. Rahul Tevatia was the top scorer with 68 runs. For Royal Challengers Bengaluru, Jacob Duffy scalped three wickets, while Bhuvaneshwar Kumar, Rasik Salamdar and Krunal Pandya took two wickets each. And today, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator in New Chandigarh, Mohali at 7:30 p.m. Gujarat Titans will now play the winner of the eliminator in qualifier two match for a place in the final.
1: केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी।
3: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उस

0: भविष्य में करा जाएगा।
1: श्रोताओं, देश दुनिया की जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों का हाल। तन्वी, कहाँ से शुरू कर रहे हैं?
2: लेट्स बिगिन विद चेन्नई।
1: जी,
2: तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय हैज अर्ज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंस्ट्रक्ट ऑफिसर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द सेंट्रल वाटर कमीशन टू रिजेक्ट कर्नाटकाज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट। ही अपील्ड टू द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज कर्नाटका नॉट टू इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट्स विदाउट the concurrence of co-basin states. He noted that Karnataka government announced a Bhumi Puja for Mekedatu Reservoir project across the Kaveri River was in violation of the Supreme Court's judgment and the Kaveri Water Disputes Tribunal final award from 18th of February.
1: और अब रुख कर रहे हैं राजधानी दिल्ली का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण

0: Because the Kaveri River was in violation of the Supreme Court's judgment and the Kaveri Water Disputes Tribunal final award from 18th of February.
1: और अब रुख कर रहे हैं राजधानी दिल्ली का. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की प्रगति पर व्यापक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले प्रदूषण के स्तर में कमी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन, मजबूत अंतर एजेंसी समन्वय और कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया. ईद उल जहा के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिसर में समन्वय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मस्जिदों और ईदगाहों के इमामों, अमन समिति, नागरिक भाईचारा समिति, नगर निगम अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया. इस दौरान संयुक्त पुलिस उपायुक्त अजित कुमार सिंघला ने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर देने, स्वच्छता बनाए रखने की अपील की. पुलिस उपायुक्त राहुल अलवल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.
2: हमारे यहाँ डिजिटल अरेंजमेंट का प्लान हो चुका है. हमारे यहाँ टोटल 1100 के हमारे पुलिस कर्मचारियों को हमने ड्यूटी पे लगाया है. उसके अलावा भी 23 कंपनीज का आउटसाइड फोर्स का हमने रिक्वेस्ट की है. तो इन सभी को हमने डिफरेंट मस्जिदों पे और खासतौर पे जो मेजर और सेंसिटिव मस्जिद है, 27 मेजर मस्जिद है और 22 सेंसिटिव मस्जिद है और वेरियस ईदगाह भी है, तो उनके यहाँ पे हमने इन सभी का अरेंजमेंट हमने पॉइंट वाइज डिप्लॉयमेंट की है.
1: सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा बैठक की. नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान श्री गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी लाने और कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया.
0: And moving towards Bangalore, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has welcomed the Supreme Court decision to dismiss the review petition filed by Tamil Nadu government against Mekedatu project on Kaveri River. He expressed happiness over the verdict and conveyed his gratitude on behalf of the people of Karnataka. He informed that the Supreme Court had already issued clear instructions on the project earlier and imposed a condition that Tamil Nadu's share of 177 TMC of river water flow must be guaranteed. He asked the central government to take final decision regarding the project clearance and added that as per their directions, the state is in the process of submitting the revised DPR for this balancing reservoir and hydroelectric venture over Kaveri River around 95 kilometers away from Bangalore. And we have some more news from Bangalore itself. Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh has said that AI is not merely a technology but a system based on trust, responsibility and transparency along with citizen welfare at its core. She was speaking after inaugurating the Artificial Intelligence AI Implementation Workshop organized by the Center for E-Governance, a state government department. Senior government officials, policy makers, industry leaders, academia, startups and ecosystem partners from across the state deliberated on building a scalable, secure and citizen-centric AI ecosystem for governance during the workshop.
1: और अब रुख कर रहे हैं शहरे मुंबई की ओर. महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कल सायन स्थित लोकमान्य तिलक अस्पताल में टीबी मुक्त मुंबई अभियान का शुभारंभ किया. बृहन मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र लोक भवन की संयुक्त पहल के अंतर्गत ये अभियान मुंबई के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों पर केंद्रित होगा. धारावी में एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि मुंबई को टीबी मुक्त बनाना न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा. इससे पहले राज्यपाल ने धारावी स्थित एकनाथ राव गायकवाड़ स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित किए. महाराष्ट्र सरकार मुंबई में सरकारी जमीन पर बने सभी जिम खानों का निरीक्षण करेगी। ये कदम पट्टे की शर्तों, किराए के नियमों और अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में ऐसे लगभग 10 जिमखाने हैं जिनमें दक्षिण मुंबई का ऐतिहासिक बॉम्बे जिमखाना भी शामिल है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि

0: राज्य सरकार नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी करती है और सुनवाई भी करती है। सरकार सरकारी जमीन पर स्थित जिमखानों के लिए पट्टे संबंधी अनुपालन और किराया नीतियों की भी समीक्षा कर रही है।
1: And about Hyderabad, the Telangana government's 99-day People's Governance Progress Plan has been successfully completed. The cabinet subcommittee has decided to celebrate its closure with grand events from 2nd of June to 12th across the state. Deputy Chief Minister Bhati Vikramarka chaired the cabinet subcommittee meeting on Tuesday. Officials were instructed to organize various programs during the closure celebrations, including Environmental Conservation Week, road safety campaigns, anti-drug awareness drives, women and child protection initiatives, housing projects, tourism promotion and renewable energy project inaugurations. The government is implementing the Indira Amma Family Life Insurance Scheme to provide social security to each and every family. The cabinet subcommittee discussed this scheme extensively, emphasizing that all eligible families must be covered.
0: और अब बात करते हैं अपने आखिरी महानगर की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान एनआईए ने इस मामले के संबंध में 2 केस डायरी सौंपी। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। और श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में आज लू का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री और अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और तन्वी, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
1: Let's begin with Chennai. Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 30 degrees and maximum will be around 40 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky but with one or two spells of rain or even thunder showers. The minimum temperature was 22 degrees and maximum will be around 34 degrees. Now Hyderabad is expected to have partly cloudy sky but with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. The temperature will hover between a minimum of 30 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
0: श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि 27 मई यानी आज का दिन किन कारणों से इतिहास में दर्ज हो गया। तो सबसे पहले किस साल में चल रहे हैं तन्वी?
1: Let's begin with 1660. The Treaty of Copenhagen was signed between Sweden and Denmark Norway marked the end of a long period of warfare between the two powers in the region.
0: 1703 में आज ही के दिन पीटर द ग्रेट ने सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की जो बाद में रूस की शाही राजधानी बनी।
1: In 1813, American forces captured Fort George in Upper Canada, which is modern-day Niagara-on-the-Lake, Ontario. And in 1916, 28th U.S. President Woodrow Wilson addressed the League to Enforce Peace, founded in 1915, and gave public support to the idea of the League of Nations.
0: 1930 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क की क्रिसलर बिल्डिंग बनकर तैयार हुई जो कुछ समय के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही, लेकिन अगले साल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। और आज ही के दिन 1933 में वॉल्ट डिज्नी द्वारा एनिमेटेड लघु फिल्म द थ्री लिटिल पिग्स का रिलीज होना एनिमेशन के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
1: In 1937, the Golden Gate Bridge opened to the public, becoming an iconic symbol of San Francisco.
0: आज ही के दिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को ब्रिटिश नौसेना ने डुबो दिया।
1: In 1942, Czech resistance fighters

0: attempted to assassinate Nazi leader Reinhard Heydrich in Prague.
1: 1964 में आज ही के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नई दिल्ली में निधन हुआ और 1999 में आज ही के दिन बोत्सवाना की पुले क्वेलागो वर्ष 1999 की मिस यूनिवर्स चुनी गई। आज ही के दिन विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार 1999 में ही सोफी पुरस्कार डरमन हेली और थॉमस कैरी को प्रदान किया गया। श्रोताओं, इतिहास के बाद जिक्र कर लेते हैं उन खास व्यक्तित्वों का भी जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। सबसे पहले याद कर रहे हैं तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये मराठी लेखक थे। इन्हें तर्क तीर्थ अर्थात तर्क का मास्टर की उपाधि दी गई थी। ये वैदिक विद्वान, संस्कृतवादी और जाने माने विचारक थे। 1955 में इन्हें इनकी कृति वैदिक संस्कृति च विकास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।
0: ओके, एंड द नेक्स्ट पर्सनालिटी इन आवर लिस्ट इज जेमी ओलिवर। टुडे इज हिज बर्थडे। ही इज एन इंग्लिश सेलिब्रिटी शेफ, रेस्टोरेंट एंड कुक बुक ऑथर। ही इज नोन फॉर हिज कैजुअल अप्रोच टू क्यूजीन एंड ही हैज फ्रंटेड मेनी टीवी शोज एंड ओपनड न्यूमरस रेस्टोरेंट्स। सो सर फिरोजी, लेट मी आस्क यू, आर यू अ फूडी?
1: बिल्कुल।
0: So, do you like to explore different restaurants?
1: मैं अक्सर जाती रहती हूँ। मुझे अलग अलग तरह के पास्ता ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है।
0: Oh, amazing! So, Jamie Oliver's is famous for its pizza. Do try it out. And Jamie Oliver is a big name. He has reached the public eye when his BBC 2 series, The Naked Chef, premiered in 1999. In 2005, he started a campaign, Feed Me Better, to introduce school children to healthier foods, which was later backed by the government. He's a best-selling British non-fiction author. As of February 2019, he had sold more than 14.55 million books. And in June 2003, he was made a member of the Order of the British Empire for services to the hospitality industry.
1: आज प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार ओट्टपलाकल नीलकंठन वेलुकुरुप की भी जयंती है। इन्हें वर्ष 1989 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुरुप को साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मुख्य रचनाओं में मरुभूमि, अक्षरम, मृग्या, उज्जयिनी, स्वयंवरम आदि शामिल हैं।
0: And today we are talking about Robert Koch. Today is his death anniversary, a German physician and microbiologist. He won the 1905 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his investigations and discoveries in relation to tuberculosis. And the day he announced the discovery of the tuberculosis bacterium, 24th of March 1882, has been observed by the World Health Organization as World Tuberculosis Day every year since 1982. As the discoverer of the specific causative agents of deadly infectious diseases, including TB, cholera, and anthrax, he's regarded as one of the main founders of modern bacteriology. As such, he's popularly nicknamed the father of microbiology, along with Louis Pasteur, and as the father of medical bacteriology. And for his life's work, he's seen as one of the founders of modern medicine as well.
1: आज मराठी लेखक, उपन्यासकार, कवि, समीक्षक और शिक्षाविद भालचंद्र नेमाड़े का भी जन्मदिन है। भालचंद्र नेमाड़े के हिंदू, झूल, बिढ़ार, कोसला आदि उपन्यास काफी चर्चित रहे। इन्हें 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
0: And moving on to our next personality, we are talking about Sir Christopher Lee. Today is his birth anniversary. An English actor and singer in a career spanning over 60 years, he became known as an actor with tremendous screen presence and a deep and commanding voice who often portrayed villains in horror and franchisee films. He was knighted for services to drama and charity in June 2009 by Charles, the Prince of Wales, and received the BAFTA Fellowship in 2011 and received the BFI Fellowship in 2013. So let's hear him talking about how passionate he was about playing his characters.
2: I've always tried to play every character, even no matter how villainous. I've always tried to play every character, in a sense, not exactly for sympathy, but to show what I've always termed the loneliness of evil in a

0: character. No matter how villainous or horrible or evil or frightening they may be, there's always a certain aspect which is pitiful, which is beyond their control. I tried to show this in Frankenstein's Monster. I tried to show it in Dracula. I tried to show it in The Mummy.
1: I'm sure you must have seen him in multiple movies, be it in Hammer horror films, in James Bond film The Man with the Golden Gun, and the Star Wars film, the Lord of the Rings film trilogy, and even the Charlie and Chocolate Factory, and Alice in Wonderland, and many, many more.
2: आज भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर और उम्दा कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्मदिन है. इन्होंने बतौर क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1981 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है. रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेट कैरियर में धीमी गति के गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभाई है. इस कारण इन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता था. ये 2017 से 2021 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे. इनकी करियर की दूसरी पारी शुरू हुई कमेंटेटर के तौर पर जब 1990 के दशक की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंट्री करियर इन्होंने शुरू किया और अपनी दमदार उत्साही आवाज और शानदार अंग्रेजी पर पकड़ के साथ ये जल्द ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय और मांग वाले क्रिकेट कमेंटेटरों में से एक बन गए.
3: And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
2: आज आशा सचदेव का भी जन्मदिन है. ये 1970 और 1980 के दशक की प्रमुख हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं. इनका असली नाम था नफीसा सुल्तान. आशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की 1972 में आई फिल्म डबल क्रॉस से. इन्होंने हिफाजत फिल्म में अभिनय किया 1973 में, जिसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और इनके अभिनय को और गीतों को काफ़ी सराहा भी गया.

0: And today is the birthday of K.B. Vijendra Prasad, an Indian screenwriter and film director who is known for predominantly works in Telugu cinema. With a career spanning across nearly three decades, his filmography consists of over 25 films as a screenwriter. He is considered to be one of the most successful screenwriters of Indian cinema, and he has frequently collaborated with his son, director S.S. Rajamouli, to deliver some of the highest grossing Indian films of all time. Let's hear a song from one of the films he has worked as a screenwriter.
1: I've had enough of this nonsense! You two, out!
2: No, Jake, I've had enough of your bullying.
3: Oh, no! Go!
0: I'm sure you must have guessed, this is from RRR, and he has also written the screenwriting of a Hindi movie, Bajrangi Bhaijaan. Let's hear the song from that.
4: श्रोताओं, समय आ गया है आपसे विदा लेने का. सरफिरोजी और तन्वी खुराना को दीजिए इजाजत. कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की.
0: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
4: नमस्कार.
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
7: हर घर सूर्य घर.
8: नमस्कार.

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी

0: कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
4: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का

0: दौरा करेंगी, राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: நேயர்களே, பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வானொலி வழி தன் கருத்துக்களை நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி வரும் 31ஆம் தேதி ஞாயிறன்று காலை 11 மணிக்கு ஒலிபரப்பாகும். இந்நிகழ்ச்சி ஆகாஷ்வாணியின் அனைத்து அலைவரிசைகள், இணையதளம், DTH மற்றும் DRM சேவைகளிலும் ஒலிபரப்பாகும். இவை மட்டுமன்றி DD நேஷனல், DD பாரதி, DD கிசான், DD இந்தியா ஆகிய தொலைக்காட்சி சேவைகளிலும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும். மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அதன் தமிழாக்கம் மனதின் குரல் இடம்பெறும். மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மீண்டும் அன்றிரவு 8 மணிக்கு ஒலிபரப்பாகும். இதனை தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து அலைவரிசைகள், DTH மற்றும் DRM சேவைகளிலும் கேட்கலாம். மீண்டும் நினைவூட்டுகிறோம் நேயர்களே, மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி வரும் 31ஆம் தேதி ஞாயிறு காலை 11 மணிக்கு.
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். அதனைத் தொடர்ந்து விஸ்வதர்பன் மற்றும் வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे. जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. गृहमंत्री में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी.
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ. षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज

0: जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इसराइल की सेना ने कहा गाजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि CEPA व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: सरकार का प्रयास है कि चीजों को आसान बनाया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। हमने बहुत ही अच्छा और संतुलित समझौता किया है।
0: इसराइल की सेना ने कहा है कि गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे को मार गिराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: इसराइल ने कहा है कि यह अभियान इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के आदेश पर चलाया गया था। रिपीट, इसराइल ने ये आदेश पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल होने में शामिल होने का आरोप लगाया। ओदे हाल ही में अजेद्दीन अल हदाद के स्थान पर सैन्य प्रमुख बना था। अजेद्दीन अल हदाद इससे पहले इसराइली हमले में मारा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल सभी लोगों को बनाना जारी रखेगा। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हवाई हमले कर टायर और मर्जियून जिले को निशाना बनाया है। इन हमलों में कल 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक है। श्री ग्राहम ने पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते में शामिल होने के आह्वान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बाद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की मूलभूत विचारधाराओं के खिलाफ हो। श्री ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ वार्ता से जुड़े व्यापक पश्चिम एशिया शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की सहित कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया था। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता अमरीका समर्थित समझौता है। इसके अंतर्गत इसराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया।

0: ये जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इधर देश में हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद एयरलाइन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने जाने वाली उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए ये अनिवार्य है कि वो यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाएं। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पूर्वी लेबनन की बेका घाटी में स्थित मशगारा गांव पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए हैं। ये हमले लेबनान और इजराइल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की अमेरिका में होने वाली बैठक से 3 दिन पहले हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्ला के खिलाफ और अधिक आक्रामक हमले करने के ऐलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। इजराइल की सेना ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो पूर्वी लेबनन में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंड मास्टर श्रीहरि ने रजत और GM मित्राभा ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि श्रीलंका के रानिंदु लियानागे ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17, 21-18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला होगा जापान की रिको गुंजी से। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इजराइल की सेना ने कहा है कि गजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति

0: कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराए नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाल इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के समृद्धि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Center has said that no case of Ebola virus disease has been reported in the country so far. Union Health Ministry said that it is closely monitoring the evolving Ebola situation following recent outbreaks reported in parts of Africa. Sources said an individual with recent travel history from Uganda who reported mild symptoms of body ache was isolated at the state-run Epidemic Diseases Hospital in Bengaluru for observation and medical evaluation. A sample was collected and sent to the National Institute of Virology for laboratory testing.

0: நேயர்கள் இதுவரை மெல்லிசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी

0: तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds.

0: benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. India Canada reaffirm shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. US Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in US-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह मौसम विभाग ने हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा अब समाचार विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है एक रिपोर्ट
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी

0: जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के

0: पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से

संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के

0: जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 2:30. சென்னை வானொலி 100.1 MHz FM கோல்டில் தொடர்வது லய விநியாசம். ஹரூர் வி மூர்த்தி, உத்திரமேரூர் டி பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோரின் தமிழ் இசை கேட்கலாம். இடம்பெறுவது ஆதி தாளம்.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस स्कीम में तीन बड़े सुधारों को मंजूरी दी है।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का घर है। उन्होंने बताया कि हर महीने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी लाभार्थियों का डेटा एक जगह मौजूद रहेगा और स्वच्छ पारदर्शी तथा सटीक खाद्य वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में भीषण गर्मी पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज चिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: or tie in.
1: And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक प्रमुख मिनी रत्न उद्यम है जो उपयुक्त डोमेन विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों से संविदात्मक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनका विवरण इस प्रकार है। पद का नाम YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास, पद संख्या 2 YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, 2 पद YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, 2 पद YP डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स, 1 पद YP कंपनी सचिव, 1 पद YP सामग्री प्रबंधन, YP मार्केट रिसर्च, YP सिविल इंजीनियर, YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 1-1 पद तथा YP MSME बिजनेस आउटरीच, 2 पद YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक, 2 पद और YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ, 1 पद। नौकरी के लिए विस्तृत विवरण, नियम, शर्तों और आवेदन पत्र के लिए देखिए NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख रहेगी 8 जून 2026। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विभागों के नाम हैं BBA, इस विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, वाणिज्य विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, साइबर सुरक्षा विभाग में 2, अर्थशास्त्र विभाग में 3, अंग्रेजी विभाग में 3, इतिहास विभाग में 3, उड़िया तथा राजनीति विज्ञान में 3-3 पद उपलब्ध हैं। सहायक प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता और वेतनमान तथा अन्य शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर पद के लिए विभाग हैं BBA, वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, उड़िया, राजनीति विज्ञान। इन सभी विभागों में 1-1 पद उपलब्ध है। आरक्षण, योग्यता, वेतनमान तथा अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। आवेदन 22 जून 2026 तक पहुंच जाने चाहिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में प्रबंधक वित्त एवं लेखा के 2 पद उपलब्ध हैं। दोनों ही पद अनारक्षित हैं। योग्यता है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान के एसोसिएटेड सदस्य आवेदन कर सकते हैं। अनुभव वित्त एवं लेखांकन में न्यूनतम 8 वर्ष का कार्योत्तर योग्यता अनुभव होना चाहिए। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन।

0: जो समता यानी संतुलन बनाए रखना ही योग है, यानी कर्मों की कुशलता ही योग है। कुशलता स्वास्थ्य में, विचारों में, व्यवहार में, और यही जो कुशलता और श्रेष्ठता है, यही होती है हमारे जीवन की श्रेष्ठता। और आधे घंटे के इस कार्यक्रम में डेटलाइन सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि योग महोत्सव से पहले अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 21 जून को इस भव्य आयोजन के लिए। इस पर हम और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। अगले आधे घंटे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपको देंगे और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: Hello, Jagriti. Hello and a very warm welcome to all our listeners tuned into the news magazine program Parikrama on 100.1 FM Gold. I'm your host Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is of course my co-host Jagriti Sharma. Well, listeners, the 2026 FIFA Football World Cup is just around the corner. And this World Cup firstly will have a massive total of 104 matches. Secondly, this World Cup introduces the 48-team format, creating a new round of 32. And lastly, this World Cup will be hosted by three nations, Canada, Mexico, and the United States. And Jagriti, the 2026 FIFA World Cup will see the historic final appearances of legends like Argentina's Lionel Messi and Portugal's Cristiano Ronaldo. So this is an event we are all eagerly waiting for. And also today happens to be the birthday of the naturally talented English midfielder named Gaza. Yes, it's none other than Paul Gascoigne. We will talk about him later in a program, but first we begin with the news headlines at this hour.
0: जी, सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है।
1: Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bidarbh.
0: भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की।
1: CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case.
0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया।
1: And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in the eliminator match in Chandigarh this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Yoga Mahotsav, 25-day countdown to the International Day of Yoga 2026. Well, Jagriti, Yoga Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 commenced this morning under the aegis of Morarji Desai National Institute of Yoga under Ministry of Ayush at the Western Group of Temples in Khajuraho, Chhatarpur, Madhya Pradesh, renowned worldwide for its magnificent temple architecture and serene surroundings. Khajuraho provides a fitting backdrop for Yoga Mahotsav 2026. The event highlights the connection between India's ancient traditions and holistic wellness, while further strengthening the momentum towards International Day of Yoga 2026.
0: बिल्कुल, योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का एक अनमोल उपहार है इस दुनिया के लिए, जिसमें दुनिया को ये दिखाया गया है कि एक संतुलित, समग्र और स्वस्थ जीवन शैली हम किस तरह से अपना सकते हैं। व्यस्ततम जीवन शैली से जुड़ी जो चुनौतियों का ये दौर है, इसमें योग एक प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान के रूप में उभरा है। और 25 दिनों की ये उल्टी गिनती हर साल एक महत्वपूर्ण आउटरीच प्रोग्राम के रूप में मनाई जाती है। इसका उद्देश्य पूरे देश में योग प्रदर्शन अभियानों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाना है और जन भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करना है। योग महोत्सव 2026 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की राष्ट्रव्यापी तैयारियों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये पूरे देश में योग की पहुंच का विस्तार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता।

0: को भी दर्शाता है। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता को और सुदृढ़ करने, व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 100 स्थानों पर 100 संस्थानों के सहयोग से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उल्टी गिनती अभियान का संचालन कर रहा है।
1: Yes, Jagriti and the theme of the International Day of Yoga 2026 to be observed on the 21st of next month will be Yoga for Healthy Aging. And Union Minister of State for Ayush, Mr. Pratap Rao Jadhav, announced this while attending the Yoga Mahotsav in Khajuraho today. The minister emphasized that yoga represents India's ancient wisdom and plays a vital role in preventive health care and balanced living. He added that to remain healthy and fit at an old age, it is imperative to practice yoga on a regular basis. The minister also noted that yoga, an integral part of India's cultural and spiritual heritage, has evolved into a global movement for holistic health and wellness following the United Nations adoption of the International Day of Yoga in 2014 after the initiative of Prime Minister Sri Narendra Modi.
0: बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है जनभागीदारी के माध्यम से योग को हर स्कूल, दफ्तर, गांव और समुदाय तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। और उन्होंने स्वास्थ्य की देखभाल के रूप में कहा कि योग और आयुष आहार ऐसी पहल संतुलित पोषण, अनुशासित जीवन शैली और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती हैं। और आपको बता दें कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव यानी कि योग दिवस का जो समारोह होगा उसका मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 दिन अभी बचे हुए हैं और इसके लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। योग का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जिसमें कि छोटे से लेकर बड़े तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक को ध्यान में रखा जा रहा है। और यस, योग न केवल रोगों के निवारण के लिए है बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक जो विकार हैं उनसे दूर रहने के लिए भी इतना अनुपम उपहार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए हर जगह सुलभ है। तो इसीलिए सरकार इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रही है।
1: Absolutely, Jagriti, and I'm sure it will be an much awaited event and that we will look forward to. And on the occasion, the minister relaunched the Yoga Sangam portal to facilitate online registrations and strengthen public participation for International Day of Yoga, and launched the Yoga Park portal to support the development of dedicated yoga spaces across states and institutions. He also unveiled the newly designed yoga t-shirt promoting the message of yoga, health and wellness, and informed that over 2 lakh individuals will participate in the 100-day free yoga training program as Yoga Mitra.
0: और जैसे जैसे पूरे देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, आयुष मंत्रालय ने इस आयोजन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक व्यापक संसाधन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हैंडबुक 2026 जारी की है। आयोजकों, संस्थानों, योग साधकों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक समूहों की सहायता से तैयार की गई ये बहुभाषी हैंडबुक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कॉमन योग प्रोटोकॉल, मंत्रालय की विभिन्न पहलों और जनभागीदारी के अवसरों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों को एक ही सुलभ संदर्भ दस्तावेज में समेटे हुए हैं। यानी कि जो ये हैंडबुक है इसके अंदर आपको योग से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपको जो मंत्रालय अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है वो सभी इसमें मिलेंगे, और योग का जो कॉमन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है या आपके लिए जितने भी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी आपको इस हैंडबुक के अंदर मिल जाएंगी। और अभिषेक, योग दरअसल लोग 21 जून जब आता है तो तैयारियां करते हैं, कई बार 100 डेज का या 25 डेज जैसे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो योग कोई लिमिटेड पीरियड के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज नहीं है, इट्स जस्ट नॉट अ प्रैक्टिस, योगा इज अ लाइफस्टाइल। क्योंकि योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, योग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना वो योग से जुड़ेंगे उतना वो रोगों से दूर रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, और आजकल जो तरह तरह के मानसिक विकार हैं उनसे भी वो दूर रहेंगे।
1: एब्सोल्युटली, सो प्रैक्टिस योगा टुडे इफ योर हेल्थ परमिट्स। एंड दिस द हैंडबुक दैट जागृति वाज मेंशनिंग, द हैंडबुक प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा since its adoption by the United Nations in 2014 and outlines the major initiatives planned for IDY 2026.

0: today following prolonged illness. He was 79. He was also former Honorary Secretary General of the Indian Olympic Association.
1: आज मराठी लेखक तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी की पुण्यतिथि है. उन्हें तर्क तीर्थ यानी कि तर्क के मास्टर की उपाधि दी गई थी. उनकी कृति वैदिक संस्कृति चा विकास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया. उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की गई. और आज ही तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कंदुकूरी वीरेशलिंगम की पुण्यतिथि है. उन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्म के नाम से ख्याति मिली. उन्होंने जाति विरोध आंदोलन का सूत्रपात किया, विधवा आश्रमों की स्थापना की, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका पाठशालाओं की स्थापना की.
0: Yes, and like we are mentioning in the beginning of our program, Paul Gascoigne, universally known by his nickname Gaza, was born today. He's an English former professional footballer, widely regarded as the most naturally talented English midfielder of his generation. He earned 57 international caps and captured the nation's heart with his cheerful, brilliant performances in the 1990 World Cup and Euro 1996.
1: प्रमुख हिंदी साहित्यकार पदमलाल पुन्नालाल बख्शी की आज जयंती है. सरस्वती के कुशल संपादक, साहित्य वाचस्पति और मास्टर जी के नाम से वे विख्यात हुए. वे एक प्रसिद्ध निबंधकार रहे. उन्हें साहित्य वाचस्पति से विभूषित किया गया. और आज प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार ओट पलाक्कल नीलकंठन वेलु कुरूप की जयंती है. उन्हें 1989 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. आइए सुनते हैं उनकी इस फिल्म से एक गीत.

फिल्म अभिनेत्री आशा सचदेव का आज जन्मदिन है। उन्होंने 1970 से 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में खूब नाम कमाया। उनका असली नाम था नफीसा सुल्तान और आशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म डबल क्रॉस से की। उनकी फिल्म हरफन मौला में उनके अभिनय को सराहा गया। आइए चलते चलते उनके गीत का ये बोल सुनाते जाते हैं।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में

0: डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी நேரம் 6:05.
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.

0: पत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य षोडश वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरंतरतायै त्रिंशदधिक पञ्चशतोत्तर पञ्चविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्यसंस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिममेधायाम् आधारिताः निर्मल आशासक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिममेधाचालितः वास्तविकसमय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरणमञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिममेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारणप्रणाली तथा च नागरिकसंवादमञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिममेधायुक्तम् आपूर्तिशृङ्खला प्रबन्धनतन्त्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिकप्रकरणमन्त्रिमण्डलसमित्या राज्यान्तर्गतखाद्यान्नपरिवहनव्ययस्य तथा उचितमूल्यापण विक्रेतॄणां लाभांशसीमायाः पूर्तये केन्द्रीयसहायतानियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत् वित्तपोषणप्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढनिर्णयः कृतः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य भारतनिर्वाचनायोगेन प्रदत्तमतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेषपुनरीक्षणं निष्पक्षस्वतन्त्रनिर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः 50+ 21 24-300 अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेषगहनपुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्यबागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितं, यासु गतवर्षे जूनमासे निर्वाचनायोगेन बिहारराज्ये विशेषगहनपुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्यन्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेष पुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्य पुनरीक्षणस्य पारंपरिक प्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय संदेशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता। ये पिपासि

0: जनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमन्त्री सर्वानेतेषु कष्टकरदिनेषु परस्परं करुणाप्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर, अहिल्यानगरेभ्यः एतावता त्रयोदश आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्र भेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्य भूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाहः वर्तते, यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितं, यत्र अनेके आपत्तिजनकाभिलेखाः, अङ्कीयसङ्गणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोकनगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीयविचारैः, नवोन्मेषेण, परस्परविश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः, संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मंत्रिणा मनिंदर सिद्धु इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य, अधिक सशक्तस्य, पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawan Lal with my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। श्रोताओं,

0: चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: गुड इवनिंग।
0: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां।
2: थैंक यू प्राची एंड सिद्धार्थ, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end in negative zone. Sensex drops over 100 points. Nifty settles at 23,907. Major Asian stock indices end mixed. And global crude oil prices decline.
0: घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स 100 अंकों से अधिक गिरा। निफ्टी 23,907 पर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में रहा मिश्रित रुझान और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे।

0: Before we dive into the program, listeners, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, आइए अब जानें कि दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 75,868 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज के उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद 7 अंक फिसलकर 23,907 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई, क्योंकि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सतर्क रहे। हालांकि विस्तृत शेयर बाजार में भी तेजी रही। मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
0: The BSE Sensex dropped 142 points to close at 75,868. The NSE Nifty ended on a flat note, marginally down by 7 points to settle at 23,907 after a choppy trade today. Benchmark domestic equity indices drifted lower after rising in early trade as investors remained cautious due to geopolitical uncertainties. However, the broader market at the National Stock Exchange extended its upward trend. The mid-cap 100 index advanced over 0.4%, while the small-cap 100 index rose over 0.1%.
1: Sensex में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में वृद्धि हुई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में पावर ग्रिड और इटर्नल में लगभग 2.5% और अधिक तथा एनटीपीसी में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एचडीएफसी बैंक 2.6% से अधिक, इन्फोसिस 0.7% और आईटीसी के शेयर में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
0: In sectoral indices at the BSE, 16 out of 25 sectors ended in positive territory. In the top gainers, power surged almost 3.3%, capital goods soared 3.2%, and utilities rose 2.4%. Conversely, top 10 banks plunged 0.9%, private banks shed over 0.8%, and financial services fell over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,275 companies advanced, 1,945 declined and 174 remained unchanged.
1: श्रोताओं, भारतीय शेयर बाजार बकरीद के उपलक्ष्य में कल बंद रहेंगे। इस बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अनुसार कमोडिटी सेगमेंट में सुबह का कारोबार बंद रहेगा, हालांकि शाम 5 बजे से कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। आइए अब रुख करते हैं रुपए की चाल की तरफ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले मामूली रूप से कमजोर होकर 95.70 रुपए पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 99.13 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ, आज जो बाजार में हमने एक गिरावट देखी है, उसमें प्रमुख कारणों में से एक कारण है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता। हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी कहा कि इट कुड टेक अ फ्यू डेज टू नेगोशिएट अ डील। सिद्धार्थ,
2: नहीं देखिए, अब पिछले मुझे लगता है तकरीबन अब 90 दिन जो है हो रहे हैं, जो लड़ाई शुरू हुई थी अमेरिका और इसराइल एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान। लेकिन जब जब हम ये सुनते हैं कि अब जो है कोई ना कोई समझौते के करीब है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, दोनों तरफ से कोई ना कोई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जो है जो समझौता है वो फाइनली हो नहीं पाता। और शायद बाजार पे भी उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है। आपको, आपने मार्को रूबियो साहब की

0: बात की, उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा उससे पहले ले जाऊं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद की दैट वी आर नाउ वेरी क्लोज टू अ डील एंड वी शुड बी अनाउंसिंग इट वेरी सून, आपने अगले दिन ही देखा था बाजार में तेजी थी, तकरीबन 1000 पॉइंट्स की तेजी जो है बाजार में दिखी थी। तो बाजार किसी न किसी एकदम एक जो एक अभी जो दायरे में या आप कह सकते हैं थोड़ा नीचे आज बंद हुआ, तो वो शायद बेसिकली वो इट इज़ लुकिंग फॉर ए डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन शायद आएगा कंक्लूसिव जब तक ये कंक्लूड नहीं होता है किस तरफ ये जो लड़ाई जो शुरू हुई थी और जो उसके ख़त्म होने का जो एक इंतज़ार मुझे लगता है बाज़ार को, उसी के बाद एक डायरेक्शन मिलेगा और उसी की वजह से हम देख रहे हैं बाज़ार में इस तरह का जो एक माहौल बना हुआ है।
1: सिद्धार्थ, FII की लगातार निकासी को लेकर के कई लोगों के मन में जो श्रोता हमें सुनते हैं गौरा, वो भी ये बार बार ये सवाल लेकर के आते हैं कि इतनी निकासी हो रही है, क्या होगा, किस तरीके से मार्केट स्टेबल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक और मत मैं देख पाती हूँ कि अगर FII की निकासी हो रही है तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो बाज़ार है वो उतना प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट बना करके लेकर के जा रहे हैं, तो ये भी एक पक्ष हो सकता है।
0: नहीं, बहुत आपने जो बात कही वो भी सही है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या कोई भी इन्वेस्टर बाज़ार में क्यों आता है
1: जी,
0: उसका बड़ा सीधा जो मकसद क्या होता है वो मतलब मुनाफा कमाने आता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय से कर रहे होते हैं इन्वेस्टर, तो शायद उनको इस समय पे लगता है कि ठीक है उनको मुनाफा कमाना चाहिए और वो शायद इस समय भारतीय बाज़ारों में उतनी वैल्यू नहीं देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है जो हमें प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं, और शायद उन मेरे को जो लगता है एक कारण यही है कि शायद दूसरी बाज़ारों में उनको ज़्यादा संभावना इस समय दिख रही है, हिंदुस्तान की बाज़ार में उस तरह की संभावना नहीं। तो हम तो एक ओपन इकोनॉमी है, आप आइए, अगर आपको लगता है इस समय इन्वेस्ट करने का माहौल माकूल है आप करिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इन्वेस्ट किया अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जो भी हो रहा है आप उस तरह से उसको निकाल के ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड साइन, स्पेशली ऐसे समय पे जब हमारे इकोनॉमी पे पश्चिम जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमारी अपनी करेंसी पे प्रेशर है, हमारे फॉरेक्स पे, और जो उसके साथ साथ एक बात और कहूँगा जो आपने कहा कि जो हमारे घरेलू निवेशक, तो शायद जो पहले हम देखते थे जब भी FIIs की निकासी होती थी एक बाज़ार में भूचाल सा आ जाता था, लेकिन आप देखेंगे पिछले दो साल से 2025-26 और ये तीसरा लगातार साल है जब FIIs की निकासी हो रही है और बड़े पैमाने पे वो जो है FIIs ने इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है, एग्जिट किया है और अभी भी एग्जिट मोड पे ही हैं वो, तो लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली आप देखेंगे इस महीने का मैं आंकड़ा देख रहा था, ऑलमोस्ट FIIs की जो निकासी है उसके ऑलमोस्ट डबल जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है उसका डबल जो है हाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की बाज़ार की मेच्योरिटी को भी दर्शाता है कि आपके जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरह से उनको अपनी अर्थव्यवस्था अपने अर्थव्यवस्था के जो का जो फ्यूचर है उस पर पूरा पूरा भरोसा है। तो और इसको बहुत नेगेटिव वे में भी शायद कहीं पोर्ट्रे किया जाता है कि FIIs जा रहे हैं बाहर, मुझे लगता है उनको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रही है तो इसलिए वो जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली चले गए और जो है अब कभी लौट के ही नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है ये कई बार जो है ये फिनोमेना कुछ पीरियड के लिए होता है और फिर मुझे लगता है आफ्टर दिस वेस्ट एशिया थिंग सेटल्स डाउन स्पेशली, और आप देखेंगे पिछले दो साल से जब से ट्रंप साहब आए हैं उन्होंने भी पूरी दुनिया को में उथल पुथल करके रखा हुआ है, तो वो भी एक कारण है, तो उसकी वजह से भी पीपल आर नो ट्राइंग टू टेक देयर मनी टू बेटर ऑप्शन, यूजिंग बेटर ऑप्शंस।
2: Right. Siddharth, you know, there was a time when the Russia-Ukraine conflict would have an impact on the market. And I think over a period of time, it was built in. And now it's in the background. And I think happenings there, whether it's an actual attack or an actual, a burst of activity, I think our markets across the world are really not really responding to that. Here we are seeing that more than activity in the West Asia crisis, it is more rhetoric. It's a conversation. It's a sentence that comes out. It's a stance. So this stance taking and this positioning, and it really is volatile because, we really don't know in terms of a direction. If you see, is the trend going towards peace talks? Is it varying from there? This uncertainty somewhere, do you think a certain kind of a fatigue will be settling into the market to say, we'll respond to it, we may not read.

0: want to get in or market is up, not reactive. And it's the discipline, compounding and time which somewhere
1: rewards
0: you.
1: I think, and mostly what I've seen is people invest mostly when markets are going up. Mm-hmm. I would say this is the time. I would say last 3 months, 4 months have been the
2: मैं बिल्कुल इसी पर आने वाली थी कि क्या ये यही सही समय, क्योंकि हमारे जब कॉलिंग प्रोग्राम्स आते हैं तो हमारे कुछ श्रोता जो हमें मतलब रेगुलरली हमारे जो श्रोता हैं रहे हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि देखिए मार्केट्स तो लगातार ही गिर रही हैं, तो इसमें हम इस मोमेंट पर पैसा लगाएं तो फिर जाते हैं नीचे, उससे नीचे लेवल पर पैसा लगाएं तो और गिर जाती है, तो ऐसे में एक मतलब एक रेस्टलेसनेस आती है, तो इसको किस तरीके से इससे उभरा जाए?
1: नहीं प्राची, एक बात और यहाँ पे बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हम कभी भी मार्केट को टाइम किसी ने नहीं किया और कभी कोई कर भी नहीं पाएगा. तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट चढ़ रही है तो उस समय आप इन्वेस्ट ना करें, मार्केट गिर रही है तभी इन्वेस्ट करें. हाँ, ये ज़रूर है कि ये समय जब मार्केट गिर रही है थोड़े वैल्यूएशंस अच्छे शेयर्स, अच्छे कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो भी आपको अच्छी वैल्यूज़ पे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा इस समय आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा. हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट जब चढ़ रही हो तब ना इन्वेस्ट करें, जब भी इन्वेस्ट करें अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, उनका बढ़िया उन पर अपनी रिसर्च कर लें, उनका बैकग्राउंड चेक कर लें, उनके ऑर्डर बुक चेक करें, उनकी बैलेंस शीट चेक करें, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें. तो समय कोई भी आपको निश्चित ये कोई नहीं बता पाएगा कि इस समय करें, लेकिन मुझे लगता है जब भी करें समय हमेशा अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म करें.
2: बिल्कुल सिद्धार्थ, बाकी जो हमारे पास खबरें हैं उस पर विवेचना के लिए आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, मगर श्रोताओं उससे पहले आइए चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार सूचकांकों में मिश्रित रुझान रहा. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.2% से अधिक फिसला और हांगकांग का हैंग सैंग लगभग 1.1% गिरा. वहीं दक्षिण कोरिया के कॉस्पी ने अपनी बढ़त जारी रखते हुए 2.2% से ऊपर की छलांग लगाई, जबकि जापान का निकेई नई रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी बढ़त खोते हुए सपाट बंद हुआ. वहीं सिंगापुर का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा. प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों की अगर बात करें तो आज बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए. फ्रांस का कैक 0.8%, जबकि जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए.
0: A quick look at the US markets. Among the major US stock indices, the S&P 500 and Nasdaq Composite rose to fresh all-time highs yesterday, led by technology shares. The Nasdaq Composite Index soared 1.2% to end at 26,656, and the S&P 500 surged 0.6% to settle at 7,519. Conversely, the Dow Jones Industrial Average slipped over 0.2% to close at 50,462. So that's exactly what you were saying, and I think when we're reading out the way the markets have moved across Europe and other Asian markets and the US, I think diversification will somewhere give more stability to a person's portfolio. It's a new area, and as you said, it might have a little barrier to entry, but it is actually a way that we should explore as investors.
1: Yes, definitely, I would say.
2: सिद्धार्थ, हम अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं. निकेई और कॉस्पी सूचकांकों को देखें तो पिछले कुछ दिनों से इनका एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, बल्कि अगर हम यूएस के बाजारों की ओर भी रुख करें तो एक अपवर्ड ट्रेंड हमें नजर आ रहा है. क्या कारण है कि इतनी अनिश्चितता के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं?
1: नहीं, जो आपको अमेरिका के बाजारों में या निकी में या ताइवान कॉस्पी जो भी आपको इफोरिया दिखाई दे रहा है ये साउथ कोरियन मार्केट में, ये बेसिकली इसका सबका एक जो बेस है या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. उन कंपनीज के प्रति लोगों का जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है या लोगों का बहुत जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कंपनियों में, तो लोगों की आशाएँ बहुत ज़्यादा जुड़ रही हैं और इन कंपनीज में बहुत ज़्यादा अभी लोगों इनको निवेश के तौर पे भी बहुत मिल रहा है. अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो अभी जो लेटेस्ट स्पेसएक्स का आईपीओ जो उन्होंने फाइलिंग की है, तो विच इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर उसकी 1.75 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यूएशन होती है, तो सऊदी अरामको का एक आईपीओ आया था 2019 में, तेल कंपनी है जो सऊदी अरेबिया की बड़ी, उसके बाद का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. तो बेसिकली ये जो इफोरिया, अगर आप जापान को देखेंगे, साउथ कोरिया को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी में, चिप मेकिंग, जो एआई से जुड़े

0: oil coming below 100 per barrel, definitely the markets are factoring in that we are close to the end of this war between US, Israel and Iran on the other side. So I think if we are able to see an agreement, I think the prices should fall very sharply also.
1: Right. So we are having all these increase in prices and all. Do you think that will come reflective into actual everyday prices also?
0: See, for now, obviously, our companies have been, our oil marketing companies have been absorbing these prices for a very, very long time. Almost 2.5 months, there was no price hike. Though the crude oil prices have almost doubled in last 3 months. So despite that, the increases by our oil marketing companies is very, very modest.
1: Right. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 1.2% down at 1,56,300 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% lower at 2,65,320 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona lagbhag 1.5% girkar 1,55,367 rupay prati 10 gram par tha aur July anubandh wali chandi 2.3% ludhak kar 2,64,521 rupay prati kilogram par karobar kar rahi thi. Siddharth, ek sankshipt tippani mein chahungi sone aur chandi ke bhav par.
0: Mujhe lagta hai sone chandi ke bhav abhi pichle jo kuch mahino se main kahunga range bound hai, to mujhe lagta hai wahi $4,500 per ounce ke aas paas abhi trade kar raha hai, to mujhe lagta hai उसी लेवल्स पे रहना चाहिए. थोड़ा बहुत जब लड़ाई की अनिश्चितता बढ़ती है तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं गोल्ड, बट मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में.
2: क्या आप, क्योंकि ये सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि क्या आप मानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस गिर सकते हैं आने वाले समय में?
0: नहीं, मुझे ऐसा कोई कारण लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरेगा. और जितने जब भी आप देखेंगे, अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो उस लेवल्स पे खरीद जो है लोग बहुत तेज़ी से खरीदते
2: हाँ,
0: भी
2: हाँ, ये भी बात है. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे और गौरंग के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: आप दोनों को धन्यवाद.
1: थैंक यू सिद्धार्थ वंस अगेन. Listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end in negative zone. Sensex drops over 100 points. Nifty settles at 23,907. Major Asian stock indices end mixed. And global crude oil prices decline. And that's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है।

0: न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration, transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called the Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation and PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Aswani Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, will support fair price shops and help in modernization of public distribution system.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. He said the scheme is

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस योजना में 3 बड़े सुधारों की मंजूरी दी है।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु

द्विवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित रखने के लिए विधेयक अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। और खेलों में, न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट में एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। उधर म्यूनिक में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: திரைகாணம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே ஜயா பாரதி. केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी. योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे. मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा. कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है. असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित. यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना. भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता. और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा. अब समाचार विस्तार से. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे. दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा

0: कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वही विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का

0: विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

0: खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy

0: Shenitela assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight. Good evening, listeners, and welcome to our program Spotlight. I'm Gaura Dhawan Lal, and today we will be discussing about key union cabinet decisions. We are delighted to have with us senior journalist Lakshmi Devi. Lakshmi, welcome to the program.
2: Thank you for having me here.
1: The cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intra-state movement of food grains and FBS dealers, margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms, and just to give another holistic perspective.
3: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है. आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है. फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम. सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत. दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं.
1: सो लक्ष्मी, हियर वी आर हियरिंग द मिनिस्टर, यू नो, टॉक अबाउट लाइक प्रेसिंग अ रिफ्रेश बटन, इंक्रीजिंग रिमुनरेशन, मेकिंग श्योर दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, एंड बेसिकली ऑल द एम्स टू सी दैट द मनी गोज टू द राइट पीपल. इन टर्म्स ऑफ द स्केल, financial and logistical, do you think that somewhere sustainability is very, very critical, because it affects the last mile, you know, the common man?
2: The scale is huge, and India is the only country in the world where such a large scale welfare scheme is being implemented, and annually 500

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा

जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज।

0: चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य IAS अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, और इस समय वर्तमान में यानी 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेस के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था, और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन, और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है, और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे, और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल

0: रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
1: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
0: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान

0: राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
2: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
3: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस

0: सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
0: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का, एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं। मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको BSF के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे BSF को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है

0: सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने

0: के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
5: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
6: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
4: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
7: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
4: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में

0: लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान रखने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 244 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। जवाब में हैदराबाद की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक चार ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ताबड़तोड़ 97 रन की पारी खेली। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Normal life has been severely affected due to the intense heat wave sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganganagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today. The India Meteorological Department, IMD, has said severe heat wave conditions are expected to continue over central and northwest India during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh and Vidarbh tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh tomorrow. Meanwhile, the IMD has predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry tomorrow. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls being conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. It observed that SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections.

0: The top court pronounced the judgment in the writ petitions, which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The Assam Legislative Assembly today passed the Uniform Civil Code Bill, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such legislation after Uttarakhand and Gujarat. The bill was introduced in the first session of the 16th Assam Legislative Assembly on Monday. It was passed by the House on the concluding day of the session today. Union Home Minister Amit Shah has congratulated the people of Assam for the passage of the Uniform Civil Code in the State Assembly. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid al-Zuha. In her message, the president said the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. President Murmu said the festival also inspires citizens to serve humanity, particularly those who are less privileged. She further urged the citizens to strengthen the resolve to promote love and harmony in the society. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार मुख्य समाचार भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दोबारा पुष्टि की अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाया उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में करीब 31 लोगों की मौत जापान की संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना जुटाने को केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दी और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता अब समाचार विस्तार से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं दोनों देशों की सरकारों संस्थाओं व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है
1: इसके बाद दोनों देशों के मंत्रियों की सह अध्यक्षता में कनाडा भारत निवेश गोल में सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन में पेंशन फंड और बैंकों सहित कनाडा के प्रमुख वित्तीय निवेशकों के साथ साथ दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया श्री गोयल ने हितधारकों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया दोनों देशों के सतत विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय बाजारों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कनाडा में भारतीय समुदाय की शक्ति और भारत कनाडा व्यापार गलियारे को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में अमेरिका का एक दल अगले महीने की पहली से चौथी तारीख तक भारत का दौरा करेगा इस दौरे का उद्देश्य व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत बाजार पहुंच

0: एयर शुल्क उपायों और अन्य कई क्षेत्रों पर चल रही वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति व्यक्त की थी। ये ढांचा व्यापक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारतीय पक्ष ने पिछले महीने की 20 से 23 तारीख तक वाशिंगटन का दौरा किया था, जहां उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बैठकें की थी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इंकार करने पर रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में इस्लामाबाद की भूमिका बेहद समस्याग्रस्त है। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध और उनकी निष्पक्षता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है। सीनेटर ने दावा किया कि ये निर्विवाद है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर रखे जा रहे हैं। उन्होंने इसराइल के खिलाफ शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों की पिछली टिप्पणियों को भी चिंताजनक बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह दी है और उनका समर्थन किया है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते सीमावर्ती तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाली इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। ये हमले 16 अप्रैल को अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष रोकने के लिए कराए गए युद्ध विराम समझौते के बाद हुए हैं। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे जटिल सुरक्षा वातावरण के जवाब में खुफिया और जासूसी विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है। हालांकि नए कानून में संसद द्वारा खुफिया गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून जन अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। परिषद की अध्यक्षता सनाए ताकाइची करेंगी और इसमें 9 अन्य कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। नए कानून के तहत जापान के खुफिया तंत्र को केंद्रीकृत किया जाएगा। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि ये घटनाएं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। नेपाल ने विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को ऑनलाइन कॉन्सुलर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोफा मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस ऐप के जरिए नेपाली नागरिक और उनके परिवार कॉन्सुलर संबंधी शिकायतें और समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। म्यूनिक में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी

you ever go, darling, I'll be home, oh so long.

0: Please stand by for the news in Hindi and English.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी।

ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल को मिशन मोड में बढ़ावा देने पर बल दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गन्ना और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के रोग उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை. எங்கள் தங்கம், காவிய தலைவி, மாணவன் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சந்திரசேகர் சர்மா. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स

0: में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिमनिक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Support and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சந்திரசேகர் சர்மா. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए

0: कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। ये बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades, till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle of award period with an outlay of 25,530 crore rupees, a central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed

0: நேயர்களே, இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை கிஷோரி அமோங்கர் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून

0: महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में आतंकरोधी दस्ते और विशेष कार्यबल ने संयुक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में आरोपियों के सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने का पता चला। ये सभी संवेदनशील स्थलों की निगरानी, युवाओं की भर्ती और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य बनेगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। ये बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Support, Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award Period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government's commitment to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked the states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed the 7 critical infrastructure projects across the railways, power, road sectors covering 9 states worth around

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजना को तेजी से पूरा करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। सिक्किम ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दी जाने वाली सर्वोच्च औपचारिक उपाधि है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सिक्किम पुलिस के 400 गौरवशाली जवान राष्ट्रपति के समक्ष परेड में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया

0: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां स्थापित करने और कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। ये निर्णय पहली मंत्रिमंडल बैठक में तय किए गए उस लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 45 दिनों के भीतर कुल 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जानी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ चौकियों और कटीले तारों की बाड़ के निर्माण की गति देकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य में सीमा के लगभग 1600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that the rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. The Supreme Court Collegium recommended the elevation of Chief Justices of 4 High Courts and Senior Advocate V. Mohanna as judges of the Apex Court. According to a statement uploaded on the top court's website, the Collegium headed by Chief Justice of India Surya Kant held its meetings on May 22nd and May 27th. It has recommended the elevation of Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Sri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Sanjeev Sachdeva, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Arun Parli, and Mohanna as judges of the top court. The Apex Court presently has 32 judges, including the CJI. 2 sitting judges of the top court are set to retire next month. Currently, Justice B.V. Nagaratna is a lone woman judge on the Apex Court. Mohanna's appointment as a judge of the Apex Court will add to the women's representation on the bench. Recently, the government had promulgated